0: 心。
1: रेडियो अमल, जज्बा है मोहब्बतें समेटने का, मालूमात की एक नई दुनिया बनाने का, ये जज्बा है आपकी आवाज बनने का, जज्बा है आपको बाखबर रखने का, एक अज़्म अपनों को पास लाने का, बिछड़ों को फिर से मिलाने का, एक जज्बा आपको खुश रखने का, आपके चेहरों पर मुस्कुराहटें लाने का। रेडियो अमन 88.4, खुश रहने का जज्बा।

0: क्या आप अपनी पूरी जिंदगी दांव पर लगाएंगे? एक पैकेट, एक डील और फिर पुलिस, हथकड़ियां, अदालत और जेल, और इसके बाद बदनामी, टूटे हुए रिश्ते और बर्बाद मुस्तकबिल। मंशियात का कारोबार किसी को कामयाब नहीं बनाता, ये सिर्फ दो चीजें देता है, जेल और बर्बादी। अपनी जिंदगी को जुर्म की कहानी नहीं, कामयाबी की मिसाल बनाए।
1: एक कौम, एक मंजिल, मंशियात से पार, पाकिस्तान।
2: क्या आप चाहते हैं कि आपका कारोबार एक नए बुलंदियों तक पहुंचे? क्या आप चाहते हैं कि आपकी मेहनत का हर लम्हा आपके लिए फायदेमंद साबित हो? तो देर किस बात की, हम आपको दे रहे हैं वो हल जो आपके कारोबार को देगा एक नई रफ्तार। हमारी ये खिदमत आपके कारोबार को नई मार्केट तक पहुंचाने में मददगार साबित होगी। आज ही हमसे राबता करें और अपने कारोबार को बढ़ाने का ख्वाब हकीकत में बदलें, क्योंकि कामयाबी के सफर में हम हैं आपके साथ। राबता नंबर 0345 93 32 580।

0: 费哈。
1: हम लेके आएंगे मोहब्बत के एहसास का खूबसूरत अंदाज रेडियो अमन आपके मन का अमन मन का अमन
2: तारखाना दस ख्वाजे ख्वाजे सांदर लगावली दीदा सशाई उर्वे
3: जी दाहो मेरे रेडियो पर बाजूर से उखसिए दो नो दा बेन में तो वो 88.4 वर बंदे रोगलाल
2: तारे खाना दा 88.4 से शायदी
3: MSG 88.4 में चेकला वाला गुवान नो दाहो करक रेडियो वर बंदे रोगला दाहो दे करक रेडियो फ्रीक्वेंसी 88.4
4: हर यो अरमान बदी पूरा कम सका खार तलाड़म तालब बंगड़ी रोड़म
2: ब्याहवार साचे बाजोर तालोची चे वारो डियो जुन ता जहां उखलो चे दास खोजा खोजा परुगामिना ब्या जहां उरवो
3: बेलकोल MSG साचे सी वारो डियो तु ता हां उखलां ता बेलकोल पा 88.4 बंदे खोजा खोजा परुगामिना खोजे खोजे सांदरे अवरे दाई से

0: चाहतों के रंग अमन के संग अमन रेडियो 88.4 नेटवर्क।
1: क्या आप अपनी पूरी जिंदगी दांव पर लगाएंगे? एक पैकेट, एक डील और फिर पुलिस, हथकड़ियां, अदालत और जेल, और इसके बाद बदनामी, टूटे हुए रिश्ते और बर्बाद मुस्तकबिल। मंशियात का कारोबार किसी को कामयाब नहीं बनाता, ये सिर्फ दो चीज़ें देता है, जेल और बर्बादी। अपनी जिंदगी को जुर्म की कहानी नहीं, कामयाबी की मिसाल बनाए।
2: एक कौम, एक मंजिल, मंशियात से पार, पाकिस्तान।
3: तेरी दुनिया मेरे रब्बा कि मुझे ही रास
4: लम्हे खूबसूरत बन जाए जब साथ हो एक खूबसूरत आवाज़ रेडियो अमन 88.4 का रख, जहां मसीह की मालूमात और एंटरटेनमेंट सब कुछ आपके लिए।
5: द करक अनूर शो खा खलक द पारा द खुशाले खबर उस्तासो पा खपल खार करक की द डीरो गण बीमारो लका शुगर अरकुन निसा फालिज जोड़ून बीमारी गुर्दों की कहानी त्रिख की कहानी बेऔलादी बवासीर मेदी जख्म ब्लड प्रेशर लुगन लगीदल द वजूद सुस्ती प्रास्टेट दमला दर्द द जोड़ून बीमारी और द जनानो नारिनो नूर पट औखकार बीमारों पर शमूल द हर मरज इलाज पा तसले सरा दियो तकड़ा काबिल और तजुर्बाकार डॉक्टर सईद जाकिर शाह आचा से अपना खवली शे सूखची डी चिमिस बी चिमिस अल चिम्पी और नूर सनदुना तरला से कौन की द पेखबर मशहूर होम्यो फिजिशियन दे द नूर मालूम द पारा पा दी नंबर राबित उकड़े 0331-52-65-340 पता याद साथे पिशावर हेल्थ मेडिकल सेंटर मलिक सिंजित मखामख सिविक प्लाजा जेल चौक खरग।

मुस्कुराहटों के लिए खुशियों की आवाज़, आपका अपना रेडियो हर पल आपके पास, तो सुनते रहिए रेडियो अमन 88.4 करक, जवान रंग अमन।

वेलकम बैक जी टेमरू सारा से दल है काम जी दारू सा बैकग्राउंड के ओर भाई जी वैसी रखी भाटा के मतलब जेल चौक नजीक रखना सलमुना राज भाई वेलकम टू द शो। उम्मीद करता हूँ कि आप फिर खैरियत से होंगे और खुश होंगे। रेडियो स्टेशन मतलब तारिक अजीज भाई को भी चॉकलेट वाला सलाम वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहु रखी भाई जहान मना थैंक यू सो वेरी मच जी रखिए भाटा काम वंस अगेन मलिक सिंह जी जेल चौक ने जी का रखना वही जी तमाम नए लिसनर और पुराने लिसनर को स्पेशली ठाक वाले अपने प्यारे रेडियो अमन जो हो गए वेलकम करता हूँ। ओके जी टीम ठाक वाला नश्ता है हाँ हो 11 ना 12 बजे शुरू हुई थे घर में जी शायद मैसेज अच्छा पहला रोगली या ओस तो पहला केड़ी मोदा ओस रोगली भी जी हो रखी भैया जहान बना दे मैसेज का बोलो जी बिल्कुल ठाक के हाँ तुम्हारा रिदुन की देखे ना मोसरा जकीम रही से 11 ना 12 बजे पूरे प्रोग्राम कौन से नो अगर की मुश्तरा ठाक वाला है चके मोरिदुन की आवी पति छे मारी ने जी रेफत हाटा का रखे भैया जहान मना थे सुबह भाई रेफत हाटा के चकीला वगैरह उसे इनका राज भाई हर खेले भाई हम ठोलो और ईदन को तसा और तसा सलाम राज भाई संगे खैसे जी ठीक ठीक है।

अरे बात हटा क्यों जहान मैंने जबिल को ठीक ठाक है माला पक शिगड़ी दी खरम ये दावा उम्मीद लगा चिता बहुत शब्द यो जहान में और जाना वंस अगेन रे बात हटा का अच्छा वही कहना चाहिए भाई यो

अच्छा वही कहना छे राज भाई यो ठाक मोकली के गाना अच्छा यो ठेक में वही जेंगा आई थिंक छे अलवो जे करे कड़े दा वही छे के लिए मालवो का वाला यो मलगर है वर्तनास हो गाना छे अलवो ही वक्र कहना वही छे मुंगते ओएल गाना छे ओस्तासो स्टाफ वाले सलामुना हाओ के अज कोई पे नशम शा इससे दे वेली गाना अरे पता ज पे पोई नशम वही सलामुना राज भाई रेहान भाई दा निजमान भाई दा अख्तर लाला दा तारिक लाला दा मौलाना साहिब दा ओचा और दे सना सना सफदर लाला था और नहीं भाई था ओके जी वालेकुम सलाम थैंक यू सो वेरी मच भाई चेहरे पर हटक सके वंस अगेन भाई जी सोखा वश आदा से नवी से ओके जी थैंक यू सो वेरी मच रे फातियो जहान मानना है थैंक यू सो वेरी मच खुशोला तो से मैसेज

0: It's 5 o'clock.
1: It's 5 o'clock.
0: Hourly time check is brought to you by Radio Amal. Jwan Rang Amal.
2: दिल्ली में एक ऐसी दौलत है जिससे हम दुनिया की हर चीज खरीद सकते हैं और तालीम बच्चों का बुनियादी हक है। अपने बच्चों को तालीम याफ्ता बनाएं। रेडियो अमन नेटवर्क जवान रंग